केवेनष्टेयाता न एङता शोवाने आ याय आ याय आ ए मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे ननवा ओया मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे ननवा ओया शेक्यं।

केवेनष्टेयाता न एङता सोवाने आ याय आ याय हा ए मंग मंग कतरित अम नामे पोषे ननवा ओया मंग मंग कतरित अम नामे पोषे ननवा ओया शेका।

त्यका को पावा कै पचे चेता आम चेवे पिछोते पमयं यकय हे क्यों नम्या ताला वहा ये ये हे ये या हे या हे या हे या को नेनम नवत क्या ओवे ओवा कै कौन मो के क्वेश्चन।